0: संत जना सुने शुभ बचन
1: सर्व आपी नाम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी ये रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मन
1: कर्ण करावन हार प्रभु जाने
0: अंतर से बार भी ओही
1: नानक दर्शन देख सब होई
0: आप सत किया सब सत
1: तिस कब ले सगली उत्पात
0: तिस पावे तां करे विस्तार
1: तिस पावे तां एकंकार
0: अंक कला लखी ना जाए
1: जिस पावे तिस ले मिलाए
0: कवन निकट कवन कहिए दूर
1: अपे आप पर पूर
0: अंतर

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु साहिब जीओ हर जुग जुग भगते उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाख स दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया

का सदकाल सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवां मत उची मत पादे राखे आप काल पुरख वाहिगुरु।

प्यारे सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सोने सतगुरु जी दे चरणा च सज बैठियां सतगुर प्यारे जी नूं प्यार करन वालियां प्रेम वालियां

प्यारे सतगुरु ते प्यारे सतगुरु जी दा प्रेम मानण वाले गुरसिख गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कोई कार्ज करन लगीए ना ता खुशी उदों हुंदी है जदों कार्ज संपूर्ण हो जावे। बच्चा स्कूल जांदा है, पास होया ते खुशी है, नहीं पास होया ता दुख है। किसे कार्ज करन नूं तुर पए सवेरे उठ के हो गया ते खुशी है, किसे कारण करके संपूर्ण नहीं होया ते दुख है। सारियां खेड़ां हन, सारियां खेड़ां इस प्यारे सतगुरु जी दे बोल आउंदे हन। नानक जिसनो लगा तिस मिलै, लगा सो परवान। वेखो ना, हुण आपां गुरद्वारा साहिब आउण लई चले सां, किसे कारण वस जे इत्थे ना पहुँच पाउंदे, राह च किते कोई कम पै जांदा, रुक जांदे, तां उहनूं संपूर्ण नहीं सी असी मनणा। इदां ही गुरसिखी प्रेम है प्यारिओ। ये जड़ा प्यारे जी दे नाल लगा है ना आप जीयां दा ते साडा, ये संपूर्ण होना बहुत जरूरी है। अध वाटे रह गया तां शायद काम नहीं आएगा। गुरु साहिब किरपा करन, वो जिन्हां ने उस प्यारे दे नाल प्रीतां लाईयां, जिन्हां ने नभाईयां, हैरानी दी गल है, मां पुत नूं प्यार करदी है, पुत मां नूं प्यार करदा है। जे आप जी नूं पुछिए, तुसी सोचण ते बह जाणा है थोड़ा चिर, जे पुछ लईए कि मां ज्यादा प्यार करदी है कि पुत ज्यादा करदा है भाई, ते अक्सर जवाब आएगा कि मां ज्यादा प्यार करदी है पुत नूं। एहसास दियां गल्लां है सारियां। प्रेम हुंदा ही एहसास दा है। कोई कहिंदा है मैं तैनूं प्रेम करदा है, जे तेरे अंदर एहसास नहीं जागदा तूं मनदा नहीं है। ये प्यारे जी का प्रेम भी इदां दा ही है। सानू सारी उम्र यह लगता रहना कि असी प्रेम करदे पर नहीं प्यारे हो। वो सानू साडे नालों हजारां लखां गुणा वध प्रेम करदे हन महाराज जी। साडा सुभा हो गया है इस दर ते आउणा, ते अपने जीवन दे विच जिवें गलास रूप जीवन है, अद्धा खाली है, अद्धा भरिया है, ते अद्धे भरे वल नूं नहीं वेखणा, ते अद्धे खाली वल नूं वेख वेख के ते हर वेले कुड़दे रहना है, अरदासां करदे रहना है, महाराज जी तूं मैनूं आ नहीं दिता, महाराज मैनूं आ दे दा, इत्थों तक के उलामा तक दिंदे रह जाणा। पर जिन्हां ने प्रेम कमाया उन्होंने कदी उस प्यारे ना अलामा नहीं दिता। हैरानी दी गल है, अकेडा सोहना इलाका है, ठंडी ठंडी हवा वगण वाला, एसी लगे घरां दे विच, सोफे ते बैठे हाँ, उलामा दे रहे हैं, पर कोई होर भी है वो तत्ती तवी ते बह के भी उलामा नहीं दे रहे। कोई होर है, चांदनी चौंक है, उलामा नहीं है। कोई होर है प्यारा, गड़ी चमकौर दी है, अखां सामने प्यारे शहीद हो रहे हैं, पुत्र शहीद हो रहे हैं, पर वो प्यारा उलामा नहीं दे रहा। जदों कई बार सोच च बैठते हाँ कि प्यारे सतगुरु जी दो विछड़ गए, माता जी विछड़ गए, आनंदपुरी पिछे रह गई, जिहड़े रह गए

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद्यागर।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीव प्रभ नाम चितेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी

मनमोहनाम तेरा संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चला। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनग पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हरा। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत नेसो तरह। अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आगावे। जे मार्ग ए जात अकेला तय हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याय नान गुरमुख परमगत पाई है। छूटत नहीं गोट लगबाही नाम जपत पार पराही। अनक बिगन जाय संघारे हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मन कबू न धोवै तो।

करे भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नान गुरमुख नाम जपिया एक बार, नाव खंड प्रथमी फिरा चर जीव उदास, पीसर थी वह अग्न माय होमत प्राण, कनक सब है भूम दान, न्यवली कर्म करे भव आसन, जैन मार्ग संयमत साधन,

पथ जाए अष्टपति। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कान में खोट गवावे, एक पीना दे दस भी हिर ले, तो मुड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से नाही चारा ताके, जिस ठाकुर से नाही।

सुख भाव है सत्संग बस अगोचर लह साधु कह संग आ जारो सह साधक संग बसे थान ऊंचे साधु कह संग महल बहु चाय साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कह कुरबार साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कह संग सो धन पावे।

ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी का अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी करे प्रभु आप, ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का द्वार से बट भागी पाइये, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नारक, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का गौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अदा खेर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्मज्ञानी की

प्रभु की आज्ञा आत्म हित आवे, जीवन मुक्त सब कहावे। तैसा तैसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी भी खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत, नानक पुरकिये जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जेत जेत कर राखे तैसा तिन नाओ। आपे करण ग्रामन जोग, प्रभावे सुफन होग, पसरिया पे आनंद तरंग, रखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मध्य तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उसत करह अनेक, जाने अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविद अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट बान भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कप का बिचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते गंध न भावे, कई कोट अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगातम निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया सरब माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे अरथ भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरखन बजाए, कई कोट पवन पाणी बह संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखेत्र, कई कोट देव दानव इंद्र शेर शत्र, सगल समग्री अपना सूत धारे, नानक जे जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सात, कई कोट वेद ब्राह्मण सिमर तर शास्त्र, कई कोट की रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंद, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रे सुगर मृगाच, सब ते डेरा है सब हूं ते दूर, नानका अलप त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जुन्नी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट घर ले थक पाहे, कई कोट किए तरबंत, कई कोट माया मैं चंत, जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब कुछ प्रभु का हाथे, कई कोट भय बै रागी, राम नाम संग तिल बिलागी, कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलो प्रभ विनास, कई कोट मांगे सप्त संग पार ब्रह्म दिन लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत किन्नो विस्थार।

तब लग ने चलना ही चीत। जब लग भो मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभु कृपा दे बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हम छुटै, सहस खटे लख उड़तावे, तृप्त न आवै माया पाछे पावै, अनक भोग बिख्या गे करै ना तृप्तावै, खप खप मरै बिना संतोख नहीं गाऊ, राजे सुबन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होय बड़भागी किसे प्राप्त, करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हास के आद गाह विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किश गिनो सपने रंग सबते दूर, सब हूं कै संग बुझै देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक मरे ना बिनसे आवे ना जाए, नानक सदी रया समाए, आप उपदेश समझे आप आपे रचया सबके साथ, आप कीनू आप विस्तार, सब कश सगाऊ करने हार, उसते भिन्न कहो किश होए थान तरंतर एका सोए, अपने चलताप करने हार, कौत करे रंग आपार, मन में आमन अपने माहे, नानु कीमत कह न जाए, सत सत सत ब्रह्म स्वामी गुरु प्रसाद गना मखियानी, सच सच सत सब कीना, कोट मदे गने बिरले जीना, भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घटबिर सुनी सरबन बखयानी, पवित्र पवित्र पवित्र प्रनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, सलोक संत सरण जो जन पर सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानक बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी संत के दुखन यार जा घटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटाए, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सोभा ते हीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग नंदक भीतरा, संत के दुखन दे मुख पवै, संतन गए दुखन काग जो लवै, संतन गए दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रगत जोन किरमाए, संतन गए दुखन तृष्णा में जरे, संत के दुखन सबको शलै, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संतो की गाथाओं को नाहे, नानक संत भावेता हुए भीगत पाहे, संत का नंदक महात ताई, संत का नंदक इंटक ना बाई, संत का नंदक प्रमे संत का नंदक महात यारा, संत का

संगा दुखी सदा अपवेत संगा दुखी किसे का नहीं मेत संगे दुखी को डान लागे संगे दुखी को सब त्याग संगा दुखी महंकारी संगा दुखी सदा बेकारी संगा दुखी जन्माय मरे संगी दुखना सुख दे ठराय संगे दुखी को नाही ठाहू नानक संत भावे तलय मिलाये संगा दुखी अद भीते टूटा है संगा दुखी किते गाज ना पहुंचाए संगे दुखी को ध्यान भरमाइए संगा दुखी उजड़ पाई है संगा दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किशना है आपन बीजा पे ही खाहे संगे दुखी का वरना रख नहार नानक संत भावे तलय उबहार संगा दुखी आऊं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़ फटाए संगा दुखी भुखा नहीं राज जो पाव इंद्र नहीं तरापै संगा दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुबेला संगा दुखी धर्म तेरा संगा दुखी सदमे थ्या कहत कीर्तन नंदक का तुरहि पया नानक जोत भावे सोई थ्या संगा दुखी बिगड़ू पय जाए संगे दुखी को दरगह मिले सजाए संगा दुखी सदा सह का संगा दुखी जा बरे ना जीवाई है संगे दुखी की पूजना सा संगा दुखी उठ चले निराशा संगे दुख ना दृष्टा गोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा गोये नानक जाने सच्चा जो सब करने हार सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से त्यावो सात गिरा सब कुछ भरत है तुझका कीजा जैसा करे तैसा को थीजा अपना के लाभ करने हार दूसर गाउन कहे विचार जिसनू कृपा करे तो सप नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक

अष्टपदी मानु की टेक ब्रिथी सब जान देवन को एका भगवान जिसके दिए रहे अगाए बरना दर्शन लागे आए मारे राखे एको मानु के अक्षनाही हाथ जिसका हुक्म सुख हुए जिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक विघ्न लागे कोए उस सत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहिला कर लह जियो।

अष्टपदी संत नाम करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप समीत विसारो शरण कमल हृदय उतारो करण कान सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम अरवथ ए तन संजो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकास राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो हर तन सेवा ते पावे जिसको रद भाषे बीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भरी करणी सा शोभा भजहर की सरणी अनुगावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निधान मेर नाम निधान जप नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध हर कह राय दैत स्थापित आवठ।

पष्टपति जब अकारे काशना दृष्टिता पापुंत कहते होता जब तारी अपन सुन्न समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चेहन जापत हर्ग सौ कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कांक शोध ब्रह्म अपन खेला वर्ती जाना न करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब गमन डर गमन कत डर आपन चल ताव करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चेतर गुप्त किस पूछत रेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ये प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीता शाल क्षेत्र लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तक से भूकम द्रवताव करण करावन करने हार नानक करते का नाह सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्वकला आपे पर भीनत वेद गतेव कह कऊ चीन जब अपने आप आपुर तारे तो सगन अब सगन कह विचार जी आपन ऊंच अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय शल अशेद अपे समाया ऊह किसे व्याप धमाया आपस गुआपे आदेश तह गुण का नाही प्रवेश जय एक एक एक भगवंत तय कौन अजंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बह बेन दूचते ऊंचा नानक आपस गुआपे पहुचा जय आप रचियो प्रपंच अकार तेह गुण में किन्नो विस्तार पापुन तय पही कहावत कहु नरक को स्वर्ग छावतार जाल माया जंजाल हमें मोह भरम बहार दुख सुख

अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हार आपे का विसार जात सुभाविता सिरठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किशो आपन सो सब जगत परोहे जागो प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल शिष्ट का जेता जी जंतर सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तुझको ना मार है सो मुआ जिस मनो विसार है तिस्त जबर कां को जाय उबरे सब सिरे सिर तिस्त जबर कां को जाय सब सिर एक निरंजन राय।

दूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो सासंग अगन सागर तरो, हर धन के भर लिहो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सासंग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो।

जे तिस नदर ना वही ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हाँ कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुने आए सिद्ध पीर सुरनाथ सुने आए तरत तबले आकाश सुने आए दीप लोआ पाताल सुने आए पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विंगास सुने आए दुख पाप का नास सुने आए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने आए मुख साला हनुमंद सुने आए जोग जुगत तन भेद सुने आए सात सिमरत वेद नानक भगता सदा विंगास सुने आए दुख पाप का नास।

निरंकार असंख मूर खंद घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सर नाहे जे फरमाए तिव तिव पाए जेता कीता तेता ना हो विण ना वह ना ही को थाऊ

सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत व प्रसाद आदि रूपे अनाद मूर्ते अजोन पुरखे अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेवानि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र

रंग रेख परम वेद प्राण जाग कह नेत भाखत नित कोड सिमृत प्राण शास्त्र नावही वह चित मद पर शांत वह प्रसाद गुण गण उदार मेहमा पार आसने अपंग उपमाया नंग अनपहो प्रकाश निहदने अनाथ आजान बाहु सहान साहु राजन राजपान हन पहान देवान देव उपमा महान

प्रेम है, के सर्वं कली है, के सर्वं धली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र धान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पहुन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है,

निरुक्त स्वरूप है, तिर्मुक्त विभूत है, परभुक्त प्रभा है, स्वजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, सुबाह तो पराज है, सदा सर्वसाज है।

अगन जल अग्नि महर जय कर हिम है सुबह तल जुबा है के सैब किरा है के नरकंग प्रनास है बेह तोले वास है के सर्वल गवान है हमें सलरवान है तमाबल तमीज है सुबह तल अजीज है।

जाके करण है। मन मान्य है जग जान्य है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्व पास्य है सर्वनाश्य है, कर्ण कर है विश्वं पर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है खलखंडस है, परते पर है करुणा कर है, जपा जाप है अथपा थाप है, अकृताकृत है अमृतामृत है, करुणाकृत है अकृताकृत है, धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है, अकृताकृत है अमृतामृत है, अजबाकृत है अमृतामृत है, नारनायक है खलकाय है, खलकायक है विश्वंपर है,

न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिंत न है पेव, आप अपनी बुद्ध है देती, वर्णत पहन पहन तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, के रूप रूप स्वरूपा, रंग पहो राव कहीं भूपा।

प्रसाद स्वरूप संयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारिया सिख संग्रह दुहट जिते उठवती उत्पाता सकल मिले करो रन कहता जे अज तो तब सरनी परे तनके दुष्ट दुख तुह मरे।

तरन गगन नव खंड मह जोत सब रूपी रहे ओ पार पन मथरा कछ भेद नहीं गुरवर्जुन प्रताख्य हर सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह

कर करम तू ठाकर तुम पैर दास जियो पिण सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न

तिस का ध्यान। जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे।

संघ अगोचर मिले, साधक संग सदा पर फुल, साधक संग आवे बस पंचा, सा संग अमृत रस पुंचा, सा संग सब की रे न, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग न कतहु तावै, साधु कै संग सदा सुख पावै, साधु कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, सा संग दुश्मन

ताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, और तारे जो अंतर नाम सर में पेख भगवान, निमख निमख ठाकर नम सुकारे, नानको परस सगल निस्तारे, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तिरा रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हित, करण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखया पर हरे मन की बास, न मन ते तरे इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानकोट मदे को ऐसा परस, बैसनु सोजसी ऊपर सो

तैसी भेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक्यो पुरख कहिए जीवन मुगत, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जेत जेत घर राखे तैसा।

राष्ट्रपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन भरमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म त्यान तारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे। कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट भेगा आत्मने कोर, कई कोट पर दर्भ कोहिर, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया सरमाहे, कई कोट परदेश परमाहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पे उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाय। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूरन खेतर, कई कोट देव दानविंदर सिर छतर। सगल समगरी अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस ताम सातक, कई कोट भेद प्राण सिमर तिर सास्त, कई कोट कीर्तन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीव, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी वै, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच। सब ते नेरा है सब हूं ते दूर, नानक आप बलवितरिया भरपूर। कई कोट पैताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बाजूनी फिराए।

नानक तिस बलहार न जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग ज्योत सुभावे सोई हो किन में थाप्यो थाप नारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार अदर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सामे रिया समाई प्रभ भावे मानुख गत पावे प्रभ भावे ता पाथर तुरावे प्रभ भावे बिनसा ते राखे प्रभ भावे तार गुण भाखे प्रभ

आवे। कहो मानु खते क्या हो आवे, जोत सुभावे सोई करावे, इसके हाथ होए तां सब किछले, जोत सुभावे सोई करे अनजानत बिख्या में रचे, जे जानते अपने आप बचे भरमे पूला दै दिस तावे, निमख मैं चार कुंट फिर आवे। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन में नीच कीट को राज पार, ब्रह्म गरीब नवाज, जां का दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह तिस प्रगटावे, जां को अपनी करे बगसीस, तां का लेखा ना गणे जगदीश, जियो पिंड सब ते

न जावे। भव लस्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतर तांका ए बनास, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में हो जाय पसमंत, किसी न बदे आप अंकारी, तरम राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जांका मिटी अभिमान, सो जन नानक दरगे परवान। कोड़ कर्म करे हो तारे, शर्म पावे सगले बिर थारे, अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे, अर दरगे कौ कैसे गवे, आपसको जो भला कावे तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व की रेण जांका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जाबे जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोड़ मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचल नाही चीत, जब लग मोह भगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सुजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक छूटै, सहस खटे लख कोठ धावै, त्रिवत नावे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करै नै त्रिवतावे, खप खप मरे बिना संतोग नहीं, कुग राजे सुपन मनोरथ बिरथे, सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करावने आपे आप, सदा सदा नानक कर जाप, करन करावन करने हार, इसके याद का विचार, जैसी दृढ़ करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो कुछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै सांग,

दुखन सर्प जोन पाए, संत काय दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत काय दुखन त्रिस नाम जलै, संत कै दुखन सब को शलै, संत कै दुखन ते सब जाय, संत कै दुखन नीचन चाय, संत दुखी का था को नाय, नानक संत पावे ताओ पी गत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक अखन टिकन न पाई, संत का निंदक माह त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज देहीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका पियोय मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डाण लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मां अंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावे तां लय मलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटै, संत का दुखी किते काज ना पहुंचै, संत के दुखी को दयान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, आपन भी जापे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे तां ले उबार, संत का दुखियों बल लाए, ज्यों जल भून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव की नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटिया केला, ज्यों बबाड़ तिल खेत में दुहेला, संत का दुखी धर्म तेरा, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, कीर्तन निंदका तुरी पया, नानक ज्योत सुभावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजन आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना त्रिष्टे कोय, जैसा भावे तैसा कियोय पया, किरत ना मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोय, सब घट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तुत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गुरास, सब काश वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खे लाभ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिसे आपन नाम देवड़ भागी, नानक जन से सलोक, तजो से आनप सुरजन सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम भौ जाय, अष्टपदी मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, बौर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मानो कह किश नाही हाथ, तिसका कुंभु सुख होए, तिसका नाम रा कंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगड़ न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसन अमृत पियो, सदा सुहेला कर लै जियो, नैनो पेख ठाकर का रंग, सात संग बिन से सब सांग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वनार कथा, अर्धर गे नानकी उज्जल मथा, बड़पागी ते जन जग माहे, सदा सदार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, ए कोय एक एक पछाने, तुद कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक ने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सास संग हर जस कैत, सर्व रोग ते हर जन रहत, अनदन कीर्तन केवल बखयान,

रात। प्रभ अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह चाये। प्रभ अपने स्यो रह समाये, जो वावत सो जाने। प्रभ अपने का खुम पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो। तिसका गुण का एक न जानो, आड़ पैर प्रभ से अजूरे। कहो नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओटले। मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता। सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी सरन सर्व सुख पावे। तिसके दरसा पा मिटावे, अवर से आण सगली छाड़। ते जन की तू सेवा लागा, मन जान ना हो भी तेरा। नानक ते जन के पूजो सद पैरा सलोक। सात पुरख जिन

सिमरत सात वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संग न चाल सतेरे तना, तू क्या लुपटा वह मूर्ख मना, सुत मीत कुटा बिर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया बिस्तार, इनते कहो कवन छुटकारा, सहती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पसारी, जिन दिए तिस बुझे नाम विगाना, नाम विसार नानक पछताना।

हम निर्गुणियार नीतिया जान, नानक तुमरी सरन पुरुख भगवान, सर वैकुंठ मुक्त मुख पायक, निम करके गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई, अरके नाम की कथा मन पाई, भव भोजन का पर संगीत रसना जपती, हर अरणीत भली सो करणी शोभा, तनवन तिर दे बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ दिहुनवा, सर्व सुख नानक प्रगा, श्लोक सार गुण निर्गुण।

पाए। सेवको सेवा बनाई कंबूज परम पद पाए। ती उपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैरे। लोग सुखिए पर लोग सुहेले नान कर प्रभ।

मारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमणि सहज गोविंद गुरु नाम। जिस मन बसे सोधन दान, सर्व इच्छा तांकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सावति उज पाय स्थान, बहुरना हुए आवन जान, हर धन खाड़ चले जन सोए। नानक जिसे प्राप्त होए, खेम सांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान, सर्वतः सिद्ध है।

गोविंद भगत काय मन विश्राम। कोटि अपराध साधु संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाके मस्त कर्म प्रभ पाए, सा शरण नानक ते आए।

जेवड़ाव चेवड़ तेरी दात जिन दिन कर कह की रात खसम विस्वार है ते कम जात नानक नाम बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुरु सा पुरखा बिनो करो गुरु पास हम कीरे।

सुराहाओ। हरजन केवट भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिला त्रिवतास है मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीव है त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तन धर्म सग लिखिया लेखास। तन तन सत संग जतर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजमा कायरे मन चितवै उद्दम जा आहर हर जी हो पर आओ। सैल पत्थर में जंतु पाए ता खारज को आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुरु प्रसाद परम बद पाया सुखे का सरिया रहाओ। जनन पिता लो सत बनिता कोई न किसकी तरिया। सिर सिर जग समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया। उड़े उड़िया बस को साथ पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मर में सिमरन करिया। सब निदान दासिया सुसदान

सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सावते आवे तो जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारन हारा हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी क्या नाने जंत विचारा तू कड़कड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पे खारे जी सब तेरे चोज मिनाणा

गुरुगर एको वेश अनेक बाबा जाकर करते किरत होए सोकर राखव डाई तोय रहाओ विश्व चसिया कड़िया पैरा तिथि वारी मा हुआ सूरज एको रुत अनेक नाने करते के केते वेश रागत नासरी महला पहला गगन में थाल रावचंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वायंत पेरी रहाओ सहतव नन्ना नैन है तोय को सहस मूर्त नायक तो ही सहस पद विमन नायक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सामे जो जोत है सोए तिसदा चानन सामे चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत भाव है सो आरती होए हर चरण कलम करंद लोभत मनो अंदन मोयाहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंको हो जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुरु पाया मनल मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पन वड्डा है कर डंडौत पन वड्डा है राहो साकत साधना जानिया तन अंतरो में कंडा है ज्यो ज्यो चला चुभ दुख पावे जमकाल सह सुर डंडा है हर जन हर नाम समाने दुख जन मरण पव खंडा है अविनाशी प्रगपाया परमेश्वर बहु सोव खंड।

पंजमा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल के बेला इहा खार चलो हरला हाया गे बसन सोहेला औद कटाए दिन सुरैना रे मन गुर मिलका सुवारे राहो यो संसार विकार संसय में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावै यो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुर ते मन बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहज बहु न हो गो फेरा अंतरदामी पुरख विदाते सरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन के तूरे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग श्री राग महला पहला पहला कर पहला मोती ता मंदिर सरे रत्न ता होए जड़ाओ कस्तूर कुंगु अग्र चंदन लिप आवे चाओ मत देख भूला विसरे त्रचित न आवे नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया वरना ही थाओ रहो धरती ता हीरे लाल जड़ते पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सो है कर रंग पसाओ मत देख भूला विसरै चरचित न आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ मत देख भूला विसरै चरचित न आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अप्याओ चंद सूरद गुफै न देखा सुपन सौन ना थाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़े अखा नाओ साचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखणा जे भावे करे तमाए राहो कुसा कटिया वार वार पीसण पीसा पाए अगे सेते जालिए पसम सेते रल जाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़े आखा नाओ पंखी होए के जे पवा सह सुमानी जाओ नदरी किसे ना आवो ना किस पिया ना खाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़े आखा नाओ नानक कागद लख मना पड़ पड़ कीचै पाओ मसू तोट ना आवे लेखन पौन चलाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़े आखा नाओ श्री राग महला पहला लेखे बोलन बोलना लेखे खाना खाओ लेखे वाट चलाइए लेखे सुन वे खाओ लेखे साल वाइए पड़े के पुछन जाओ बाबा माया रचना तो अंधे ना विसारिया ना तिस एह ना ओ हो रहो जीवन मरना जाय कैथे खाजा काल जिथे वै समझाइए तिथे कोय ना चलियो नाल रोबण वाले जितरे सबन पंड पराल सबको आखे बहुत बहुत घटना आखे कोय कीमत किरना पाया करना वड्डा होए साचा साहब एक तू होर जिया केते लो नीचा अंदर नीच जात नीची हूं आत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्यारिस जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बखशीस श्री राग महला पहला लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा पर मल मुख सुद्धि अग्न क्रोध चंडाल रस का सुप सलाना ए करम मेरे करतार बाबा बोलिए पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहो रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै घट नाम निवास जित बोलिया पत पाई है सो बोलिया परवान
ਫਿਕਾ ਬੋਲ ਵੇ ਗੂਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਾਨਿਆ ਜਾਣ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਖਾਣ ਤਿੰਨ ਮਤ ਤਿੰਨ ਪਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੈ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਤਿਨਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ ਵਰ ਸਵਾਲੇ ਓਕਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਚ ਦਾਨ ਨਾਨਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਗੁਲੋਲਾ ਕੂੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਮਤੇ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨਾ ਸੋਫੀਆਂ ਰਾਖਣ ਕਹੋ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨੀ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੱਚ ਜਾਣ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਣ ਰਹੋ ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਜਿਸ ਵੇ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੁਣੇ ਵਖਾਣੇ ਜਿਤੜੇ ਹੋ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰਾ ਜਾਓ ਤਾ ਮਨ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਆ ਜਾ ਮੈਲੀ ਪਾਏ ਥਾਓ ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਸਰ ਪ੍ਰਮਲ ਧਨਵਾਸ ਤਾਮ ਖੋਵੈ ਉਜਲਾ ਲੱਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਤ ਦੁਖ ਤਿਸ ਪੈ ਆਖੀਏ ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਤਿਸ ਵਿਣ ਸਭ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤਾ ਪੈਰਨ ਖਾਣ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਵਾਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਲ ਮੋਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ ਪਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਨਾ

तूर बिन सब डे परमाय दुविधा डोबे पूर मंदिर सब तरो जतलाय जिन गुरु मुख नाम न भूतिया अमर जन में आवे जाय रहो तन सुचा सुहा किए जिसमें सच नाओ पै सच राति देहरी देवा सच सुहाओ सचि नद निहाली अबुण न पावे चाओ सच ते पवना पया पवने ते जल हो जल ते त्रिभुण सा जय कड़गड़ जोत समो निर्मल मेला नाथिय सब रथे पत हो एहो मन साच संतोखिया नदर करे तिस माए पंच भूत सच भैरत जोत सजीवन माए नानक अगुण विसरे गुर राखे पत ताए श्री राग महला पहले नानक बेड़ी सगी तरिय गुर विचार कयामे क जाव हे पुर परे अहंकार मान

सुख हर भुगण संत सभा मिल ज्ञान नेतो एनस हर प्रभ सेव्या सगर दिया नाम कूकर कूड़ कमाए गुणनंदा पजे पचान पर में भूला दुख कण हो जम मार कर आए खुल हाल मनमुख सुख न पाइए गुरुमुख सुख सुभान अथे धंध बिठाइए सत लिखित प्रवान हर सदन गुर सेवदा गुर करणी प्रधान नानक नाम न विस्तराय करम सच्चा निस्वाण श्री राग महला पहला एक तिल प्यारा विसरै रोग वड्डा मन माए क्यों दरगह पद पाइए जा हर न वसै मन माहे गुर मिले सुख पाइए अग्न मर गुण माहे मन रे एहन सार गुण सार जिन खिन पल नाम न विसरै ते जन विरले संसार राव ज्योति ज्योत मिलाइए सुरति सुरत संजोग हिंसा में गट गए ना ही सहसा सोग गुरमुख जिस हर मन वसे तिस मिले गुर संजोग काया कामण जे करीब गे भुगण हार तस्यो ने हो न की जय जो दिस चलन हार गुरमुख रव सो अग्नि सो प्रभ से पतार चार अग्नि वार मर गुरमुख जल पाए अंतर कमल पर गास्या

सज्जन मेरे रंग ले जा सुते जी राण पिवंजा डूमणी रोवा छिणी बाण किना सुन है गोरिये अपन कन्नी सोए लगी आवे सौरे नितना पेया होए नानक सुती पेये जन विरती सन गुणा गवाई घंठड़ी अवगुण चली बन श्री राग महला पहला कर दूजा दूजा पे रसी आप रस आपे रावण हार आपे हो वे चोलड़ा पे सिज बतार रंग रत्ता मेरा साहेब राव रे आप

नानक बेनती तू सरवर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे वेख विगास श्री राघवान ला पहला कर दे जाए तन धरती बीज कर्मा करो सरल प्याव सारंग बाणी मन किरसाणा हृदय जमाय लयो पाप सपर निर्वाणी काय करो समूढ़े माया पे तो सुतो सगल काल तर माता तेरे होए नानत सखाय रहो बिखे बेकार दुष्ट कृका करे नता जो आत्म होए त्याई जप तब संयम होए जब राखे कमल बिकसै मद असरमाई बेसब तारो बासरो संग्रह दिन खोड़ा निधकाल सार दस अठार मैं परम प्रोजी ने कह नानक एव एक तार श्री राग महला पहला करती जामल कर धरती बीज शब्दो कर सत की आवनित दे पानी होए किसान मान जमाय लै सुत दो जुग मुड़े बजानी मत जान सगली पाया मालक मन रूकी सोभाया इत विधि जन्म गवाया रहो अब तन चिकड़ोए मन मिटको कमल के सार नहीं मुल पाए भौर स्थान भाख्या बोल क्यों बुझे जान है बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी है मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिन्नी कर एक त्याया तिकर रखे पंज कर साथी नाओ सैतान मत कट जाई नानक आखेरा पैजल ना मार तन खित को संजय आये श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मोलिया हरिया किया संसारो आब खाक जिन बंद रहा तन सजन हारो मरना मुल्ला मरना पिकरता रो डरना रहो ता तू मुल्ला ता तू का दी जाने नाम खुदाई जय बो तेरा पड़िया हो वह को रह न परिये पाई सोई खादी जने आप तय के नाम किया डारो है पियो सीधे न दसी सज्जा सच्चा सजन हारो पांच वक्त निवाज गुजारा पड़े के तेब कुरान नानक आखे गौर सदे रहो पीना खाना श्री राग महला पहला घर चौथा एक सुहान दो सुहानी नाल भलके भौके सदा बयाल कूड़ छुरा मुठा मिरदार तनक रूप रा करतार मैं पत के पंद न करनी की कार हों बिगड़ा रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारा संसार मैं यहाँ से हो आधार रहो मुख निंदा का दिन रात प्रगट जोही निशनात काम क्रोतन वसे चंडाल तनक रूप रा करतार पाही सुरत में लुकी वेस हों ठगवाड़ा ठगी देस खरा सियाणा बहुत अपार तान गुरुबरा करतार मैं कीता न जाता हराम खोर हूं क्या मोह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे बिचार तान गुरुबरा करतार श्री राग महला पहला घर चौथा एका सुरत जेते हैं जी सुरत होना कोई न की जे ही सुरत है आतंदरा

पारे सगर पुरख न मन सदन लगो प्यार स्नान दान देता करें दूजे पाए कुआर हरदेव अपनी कृपा करे तां लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कहे ते अपार श्री राग महला तीजा के सुहा से भी क्या जप करे सगुर पुछ जाए सगुर का पाणा मन ले विच आप गवाए ए हा सेवा चकरी न वसे मन आए न मही ते सुख पाई सचे शब्द सुहाए मन मेरे आंजन जागर चेत अपनी गति रख लै कूंज पड़े की खेच रहो मन के इच्छा पूरिया सुधरिया भार पूर पै पाए भगत कर राति हर जो वेखे सदा दूर सचे सब सदा मन राता प्रम गया शरीरों दूर निर्मल साय पाया सचा गुण गहीर जो जागे से उपरे सुते गए मुहाय सच्चा शब्द ना पछाणे हो सुपना गया विहाय सुंजे कर का पौना जो आया त्यों जाए मन मुख जन्म व्यथा गया क्या मैं जैसे जाए सब कुछ आपे आप है हमें विच कह न जाए गुर के सद बचाने दुख हो मैं विचों गवाए सग सेवन अपना हो तिन कै लागो पाए नानक दर सच्चे सचे आ रहे हो तिन बलिहार है जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला भगत विचारिये ता कित वेला भगत होए अंदन नामे रत्या सच्चे सचे सोए एक दिल प्यारा विसरा भगत कने ही होए मंत्र शीतल साच स्यो सास न बिरथा कोए मेरे मन हर का नाम च आए सच भगत तासिए जहाँ हर वसै मन आए राव सहज खेती राये सच नाम बिज पाए खेती जमी अगली मनवा रजा सहज सो पाए गुर का सौ दे अमृत है जत पीते जग जाए मन सचा सचरता सचरिया सुमाए आखण वेखण बोलना सौदरिया सुमाए बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाए हो मैं मेरा रह गया सचे लिया मिलाए तिनको मैल दूर है जो सच रह लिवलाए नजरी नाम से आइए बिन कर्मा पाया ना जाए पूरे भाग सत संगत लहे सगुर पिटे जिसे आए अंधन ना मेरा त्या दुख विख्या बिचों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पौ तिन पाए ओन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के अनुसार दुबिधा मैल चुकाए न राख और तार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हो मैं मैल भर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द स्वर्ण हर राव सच्चे शब्द मन मोहे प्रभा पहले मिलाए अंधना मेरा त्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति प्रभु जावता बिन सगुर पूजना पाए जिन कहो पूर्व लिखिया सतगुर भेटिया तन आए बिन नाम साब डूमणी दूजे पाए खुआए ते बिन कड़ी न जीवते दुखी रहन विहाए परम बुलाणा अंदुला फिर आवे जाए नद करे प्रवे अपनी आप लय मिलाए साब किस सुनदा विगता क्यों कृपाया जाए पाप पाप कमाऊंदे पापे बच बचाए सुप्र नजर न आवे मन बुझ न पाए जिस वाले सोई वेखे नानक गुरु पाए श्री राग महला तीजा बिन गुरु रोग न टुटे हो मैं पीड़ न जाए गुरु प्रसाद मन से न मेरा समाए गुर शब्द हर पाई है बिन शब्द परम पुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलास उपर आवन जान ना होए राव हर एक दाता वर्तदा दूजा वर्ण कोय सब सलाही मन वसे सहज ही सुख होए सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तै दे